सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए। प्रधान पुरख प्रगट सब लोए,

रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई।

0: मांगै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: तुध आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वडे आई, कोई नाउ ना जाने मेरा अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै। गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदासै हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नाम। सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई, जस डठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै। कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। हे नमाणिया दे मान, नितानिया दे तान, न्योटिया दी ओट, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी की कृपा बख्शिश रहमत होई। आप जी ने अमृत वेले तो लैके संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते। शाम दे दीवाना दी समाप्ति तो उपरंत आप जी दे पावन सुख आसना दी सेवा, सोहिला साहिब पावन बाणी दे पाठ होए कृपा करनी। बाणी पढ़दे आं, सेवा करदे आं, होईआं भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी, अगे तों समत बख्शणी, सिर ते मेहर भरिया हथ रख के शरदा प्यार भावना दे नाल सेवा करन दे उदम बख्शिश करने जी। सरबत संगतां दीआं हाजरियां दर प्रवान करनियां, चलिया होया कदम कदम लेखे विच लाउणा कृपा करो। आप जी दे सुख आसन तैयार हन, आप अपने सुख आसन स्थानां ते विश्राम करो। संगतां नूं खुशियां बख्शो, फिर अमृत वेले संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश करके निहाल करना जी। सुख आसन स्थानां नूं चाले पाउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

साहिब जी, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलका सेव, धर्मादे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी।

अभीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूर है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूत है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है।

पूर्ण पुरखापार सर्वेश्वर च्यो स्वयं पवगण भंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरखादेश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख भे संग राग नारंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपा मी कानोस्तत एक पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्वभंजन याद रूपा सूतांगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनभेग सर्वशास्त्र न जा नहीं जय रूप रंग रेख बे परम वेद पुराण जा कह नेत भक्त नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आबही बहुचित मद पार छंद त्वै प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असमी अपंग उपमान अंगना अनुभव प्रकाश निर्धन

सदृशय कृशय भगवती संतु प्रसाद कहते के आशिज देसै के आपिज भेसै के आगन कर्मै के आपन भरमै के आपिज लोकै के आदित सुखै के अवधूत भरने के बेभूत करने के राज प्रवाह के धर्म तुझा है के आशोक भरने के सुरभा भरने कि जगदंगरीति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने के अधीन है कि रोजी रजा कर रही मेरे हक है कि पाक भी ऐब है कि गैब लुगैब है कि अफुल गुना है कि शाहान शाह है कि कान कुनिंद है कि रोजी देहांत है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है सर्वत्र दान्य है सर्वत्र गौण है सर्वत्र पौन है सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र भाव हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधानी है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान्य है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वंग कलीमे के परम फहीमे के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नुल वजू है तमाम रुजू है हमें सुलसला में सली खत्म हो दामे गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमा मै रजूल निधान हरी फुला जी मेरे या एक यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजी जुल निवास है गनी मुलखिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुख विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो प्राज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है।

मित्र पंगी त्रिका मित्र प्रगंत्र बाधे अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भागे सुसर्वानुराग त्रिपौत स्वरूप है अशज है अशूत है कि नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोगत प्रवाह है सदा वंग सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है निरोगत सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है।

असंभ है, अगम्भ है, अनीर है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंग्याता, सर्वंग्याता, सर्वंगहर्ता, सर्वंगकर्ता, सर्वंग प्राण, सर्वंग त्राण, सर्वंग कर्म, सर्वंग धर्म।

माथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंत प्रसाद के जा हर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करीम है कि रोजी दिहंद है कि राज कर हिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिष्टुल निवास है कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामलु तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल अजमा है अमीकुल अमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमान है कि अचल प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचल अनांग है कि अमितो अपांग है मद पार शंत प्रसाद

0: सर्वपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा करे, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगते सुने, ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर है, करुणा करे, अजपा जप है, अथपा थाप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत तरणीकृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिप्तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवस है, जस के जस है, पुजंग पर्यात शांत
1: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे

मरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्री पत के प्रस है पग, ते नर फेर न दे तरेंगे, कह पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो,

जी की फतह पातशाही दसवीं कभी उबात बेनती जाओ भाई हमरी क्रोहा दैर अच्छा पूर्ण हुई चित की इच्छा तब चन्नन मन रहे हमारा अपना जान क्रो प्रतपारा हमरे दुस्सबै तुम का भवा पाद मुहे बचावा सुखी बस है मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संघरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उभरिये मन काल का त्रास निवरिये वो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करिये और अच्छा राख ले उम्र रखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमाशा जमन काल योगी शिव की ओ बेदराज ब्रह्मा जूथी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार हैता है हमारा जमन काल सब जग मनायो देव दैत जच्छन उपजायो आओंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसीह को हमारी सकल प्रजाजनी आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट की अंतर की जान भले बुरे की पीर पशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर करा करता रा प्रजा तर तब देह अपारा जब आकर कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम

अकाल पुरख अंतरजामी अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहेब होर गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हों तो पंथ नू विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो जी।

तत् सब को निवे आप को पर को निवे न कोए धरत राजू तो लिए निवे सोगो राहो अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गा हे सीस नवाया क्या थी है जर दे।

तेस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तेस ताजेवर कहा को जाए सब सुर एक में।

हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन वसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अनदिन पूजह गुर के पैर हे लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभु आपह मिले।

ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु काला गा मीठा। सगल समिग्री एक सघट माहे, अनकरंगना ना दृष्टाहे। नाउ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही महेश का विश्राम। सुन